0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री खलीलुर रहमान को

0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जनरल असेंबली हॉल में मंगलवार 2 जून को हुए गोपनीय मतदान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के उनके प्रतिद्वंद्वी अंद्रयास काकोरिस को 91 मत हासिल हुए। 193 सदस्य देशों वाले यूएन महासभा में कुल 190 वोट डाले गए और कोई मत अमान्य नहीं था। यूएन महासभा की वार्षिक अध्यक्षता भौगोलिक आधार पर 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी बारी से साझा की जाती है और सितंबर 2026 से आरंभ होने वाले 81वें सत्र की बागडोर की उम्मीदवारी इस वर्ष एशिया प्रशांत समूह के पास थी। राजनायक रहमान ने निर्वाचित होने के बाद कहा कि वह इस दायित्व को एक ऐसे क्षण में संभालेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है और इसके मद्देनजर उनका कार्यकाल भरोसे की बहाली, रूपांतरकारी बदलावों के प्रबंधन और सर्वजन के लिए वादों को साकार करने पर केंद्रित होगा। महासभा 81वें सत्र के लिए उनकी थीम है विश्वास की पुनर्व्यवस्था, परिवर्तन का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन की आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 विशिष्ट प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है: शांति व सुरक्षा, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी, जलवायु कार्यवाही व पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, उभरती टेक्नोलॉजी की संचालन व्यवस्था और यूएन सुधार। विदेश मंत्री रहमान अपना एक वर्षीय कार्यकाल 8 सितंबर को शुरू करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप का सामना करने के प्रयासों में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, अलबत्ता परीक्षण, निगरानी और सामुदायिक विश्वास जीतने में अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने इबोला प्रकोप से निपटने में DRC के साथ खड़े होने का संकल्प व्यक्त किया। डॉक्टर टेड्रोस DRC की यात्रा से लौटने के बाद बुधवार को जिनेवा में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए उम्मीद जताई, इस बीमारी के प्रकोप को एक बड़ी बढ़त मिल गई थी और हम अब भी पीछे हैं, लेकिन DRC सरकार के नेतृत्व में हम तेजी से बढ़त बना रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
1: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस का प्रकोप जारी है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार पिछले 2 सप्ताह के भीतर अब तक लगभग 900 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 220 से अधिक संदिग्ध मौतें हुई हैं। वहीं युगांडा में गुरुवार तक 7 मामलों की पुष्टि हुई है। WHO विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी उस समय होती है जब आप किसी संक्रमित की देखभाल में जुटे हों और इसलिए परिवारों व मित्रों के लिए ये जरूरी है कि बीमार प्रियजन को छूने से बचा जाए। स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इबोला का फैलाव एक बेहद कठिन हालात में हो रहा है। DR कांगो का पूर्वी हिस्सा पहले से ही हिंसक टकराव, विस्थापन और भूख संकट से जूझ रहा है। इतुरी प्रांत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 12 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।
2: फिलहाल इबोला की बुंडी बुगियो प्रजाति से निपटने के लिए उपचार और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और संभावित उपायों की अभी पड़ताल की जा रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस हालात का जायजा लेने के लिए DR कांगो की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय समुदायों को यह संदेश देने के लिए यहां आए हैं कि वे अकेले नहीं हैं। UN स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने हथियारबंद गुटों से युद्ध विराम के लिए सहमत होने की अपील की है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जरूरतमंद आबादी तक पहुँच सकें और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके।
0: पिछले वर्ष विश्व भर में हिंसक टकराव संबंधी यौन हिंसा की 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2024 के आंकड़ों की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक संख्या है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और करिबियाई क्षेत्र में बलात्कार, यौन दास्ता व अगवा किए जाने को युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
1: संघर्ष ग्रस्त इलाकों में यौन हिंसा के विषय पर UN महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये आंकड़े एक बढ़ते वैश्विक रुझान को दर्शाते हैं। इसके साथ ही असुरक्षा व्यवस्थापन मामलों में उछाल आ रहा है और जीवित बचे व्यक्तियों के लिए वित्तीय साधन डगमगा रहे हैं, जिससे इस संकट को और हवा मिल रही है। रिपोर्ट बताती है कि हिंसक टकराव से प्रभावित 21 देशों में सरकारी और गैर सरकारी तत्वों ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दास्ता, जबरन विवाह, तस्करी, अगवा किए जाने समेत अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। महिलाएं और लड़कियां मुख्य रूप से निशाना बनी, जबकि पुरुष और लड़के भी यौन हिंसा का शिकार हुए, अक्सर हिरासत केंद्रों में यातना के रूप में। इस दौरान भुक्तभोगियों की आयु 1 से 70 वर्ष तक दर्ज की गई।
2: रिपोर्ट के अनुसार संगठित आपराधिक समूहों समेत गैर सरकारी हथियारबंद गुटों ने समुदायों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करना जारी रखा। हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाकों में छोटे हथियारों की व्यापक उपलब्धता होने की वजह से यौन हिंसा को हवा मिलने की आशंका जताई गई है। मानवीय सहायता प्रयासों के लिए सीमित पहुंच होने, असुरक्षा और वित्तीय संसाधनों की किल्लत के कारण दुर्व्यवहार मामलों में जानकारी जुटा पाना कठिन हो गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों से रोकथाम, जवाबदेही और पीड़ितों के लिए समर्थन को मजबूती देने का आग्रह किया गया है। इसके लिए कई कदम उठाने पर बल दिया गया है। मानवीय सहायता तक बेरोकटोक पहुंच, जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूती और चिकित्सा, मनोसामाजिक व कानूनी सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता।
0: विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाने की संभावना लगभग 50% तक पहुंच गई है और यह आशंका समय के साथ बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के एक दौर की ओर बढ़ रही है और यह लगभग निश्चित है कि अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके नजदीक बने रहेंगे। विस्तार जानकारी के साथ पूजा यादव और सचिन गौड़।
1: विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया खतरनाक गर्मी की दौर की ओर बढ़ रही है और अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड या उसके करीब बना रहने की लगभग निश्चित संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए 2024 से अधिक गर्म होने की 86% संभावना है। इस अवधि में कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की सीमा को कुछ समय के लिए पार कर सकता है। गौरतलब है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा महत्वपूर्ण है और इसके लंबे समय तक पार होने पर चरम मौसम, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्रों के जोखिम बढ़ सकते हैं।
2: हालांकि अस्थायी रूप से इस सीमा का पार होना ये नहीं दर्शाता कि जलवायु लक्ष्यों को पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कई दशकों तक लगातार तापमान वृद्धि आवश्यक होगी। इस साल के मौसमी रुझानों की वजह से 2027 अब तक का सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड बना सकता है। साथ ही आर्कटिक क्षेत्र अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म होगा और समुद्री बर्फ में गिरावट से पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविकाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है।
0: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। जर्मनी के कैथोलिक विद्यार्थियों के संघों के प्रतिनिधि छात्रों ने शुक्रवार को वैटिकन में संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। जर्मन कैथोलिक छात्रों का अभिवादन कर संत पापा लियो ने कहा, आद पेत्री सेदम अर्थात पेत्रुस के सिंहासन रोम तक आने का आपका फैसला उस कैथोलिक विश्वास से प्रेरित है जो आपकी प्रभु येसु के शिष्यों के तौर पर जोड़ने वाली सहभागिता और आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों को परिभाषित करता है। जर्मन कैथोलिक संघों के छात्रों की कैथोलिक अस्मिता के बारे में संत पापा ने कहा कि विश्वास में उनका दृढ़ समर्पण उनके संघों के 4 सिद्धांतों में समाहित है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, और ये हैं धर्म, विज्ञान, मैत्री और मातृभूमि। संत पापा ने कहा, अतीत की तानाशाही और विचारधाराओं के समक्ष कैथोलिक धर्म कभी भी सिर्फ दिखावा या लेबल नहीं रहा, बल्कि यह विश्वविद्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर साझेदारी का एक तरीका रहा है। सुसमाचारी खमीर की तरह आपका भ्रातृ संघ वैज्ञानिक और राजनैतिक वातावरण सहित अलग अलग अकादमिक, व्यावसायिक और सामाजिक दायरों में भी बढ़ता रहता है। आपकी गतिविधियों का सामुदायिक पहलू न सिर्फ आपके देश को बल्कि संपूर्ण यूरोप को लाभ पहुंचाता है जिसका केंद्र जर्मनी है। संत पापा ने कहा कि इस भौगोलिक केंद्रीयता के साथ आप उचित ही मानव व्यक्ति की सांस्कृतिक केंद्रीयता को जोड़ते हैं जो ईश्वर की सृष्टि और स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। उन्होंने छात्र संघ के सदस्यों से कहा कि शिल्प वैज्ञानिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करते हुए आपको हमारी आम इंसानियत के अध्ययन और उसे प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे तर्क का इस्तेमाल होता है वैसे ही विश्वास की रोशनी भी आज के समय के वादों और धोखे को रोशन करती है और हर इंसान से एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहायता देने का हर संभव प्रयास करने की मांग करती है। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न छात्रों से संत पापा ने कहा कि इनसे उन्हें अवश्य ही यह अनुभव हुआ होगा कि यह सिर्फ एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि एक बुलाहट या मिशन का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि सत्य की तलाश एक सर्वोत्तम चीज है जिसकी चाह रखना और जिसे प्रोत्साहन देना आवश्यक है। जर्मनी के समस्त कैथोलिक छात्रों को संत पापा लियो 14वें ने आमंत्रित किया कि वे यह स्वीकार करें कि संस्कृति मानवता की भलाई है, सत्य हमें स्वतंत्र करता जबकि झूठ और मिथ्यावादिता नामों और चीजों को भ्रष्ट कर देती है। उन्होंने कहा, लोगों को और विशेष रूप से निम्न, गरीब या बीमार लोगों को अमानवीय बनाने वाली चीजों के समक्ष मैं आपसे ख्रिस्तीय मानवतावाद के गवाह बनने का आग्रह करता हूँ। संत पापा ने कहा, इस संदर्भ में आपके एसोसिएशन के एक जाने माने पूर्व सदस्य संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की कही बात पर गहराई से विचार करने हेतु आपको आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने 2011 में बुंडेस्टाग को संबोधन में कहा था, एक सुसंगत इंसान की इकोलॉजी विकसित करें, इंसान का भी एक स्वभाव है जिसका सम्मान अनिवार्य है। वैटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ जून माह के अंत में कार्डिनल मंडल सभा में भाग लेने वाले कार्डिनलों को लिखे एक पत्र में कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे ने संत पापा पॉल षष्ठम भवन में आयोजित 4 कार्य शिविरों के शीर्षकों की घोषणा की। संत पापा लियो 14वें द्वारा 26, 27 और 29 जून को बुलाई गई कार्डिनल मंडल की सभा में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और स्थानीय कलीसियाओं के जीवन पर विचार विमर्श के साथ साथ संत पापा के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर चर्चा तथा धर्म सभा में चर्चित विषयों को लागू करना शामिल होगा। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे द्वारा 3 जून को कार्डिनलों को प्रेषित पत्र में उक्त विषयों की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि कार्डिनल मंडल की उक्त सभा का लक्ष्य आज कलीसिया के जीवन और मिशन संबंधी विशेष महत्व के मुद्दों पर परस्पर श्रवण, आपसी समझदारी और साझा चिंतन के स्थान के रूप में कार्य करना है। कार्डिनल रे ने कहा कि उक्त कंसिस्ट्री का पहला सत्र अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और स्थानीय कलीसियाओं की वास्तविकता पर और दूसरा और तीसरा सत्र 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर केंद्रित रहेगा। इस विश्व पत्र का 5वां अध्याय विचाराधीन होगा जिसका शीर्षक है सत्ता की संस्कृति और प्रेम की सभ्यता।
उन्होंने कहा कि इस अध्याय में संत पापा लियो स्मरण दिलाते हैं कि ध्रुवीकरण, हिंसा और बढ़ते संघर्ष से चिन्हित दुनिया में शांति अन्य मुद्दों के बीच केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सामान्य भलाई के लिए एक शर्त है और लोगों की नैतिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया द्वारा 4 जून को मनाए गए ख्रीस्त देह पर्व पर संत पापा लियो 14वें ने 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर ख्रिस्तियों के लिए यूखरिस्त के महत्व को समझाया। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, यूखरिस्त में हम इस यथार्थ का स्पष्ट रूप देखते हैं कि हम ख्रीस्त की कलीसिया हैं, उनके सदस्य हैं, उनका शरीर हैं, हम उनमें भाई बहन हैं और भले ही हम कई और अलग अलग हैं, ख्रीस्त में हम सब एक हैं। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, यूखरिस्त हमें न्याय और साझेदारी के प्रति उदार बनाकर उन लोगों के प्रति विशेष चिंता रखना सिखाता है जो गरीबी अथवा हाशिए पर रहने के बोझ के तले दबे हैं। और अपने तीसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, ऐसी स्थिति में जब नए आर्थिक और तकनीकी नेटवर्क बहिष्कार, अलगाव और निर्भरता उत्पन्न करते हैं, तब यूखरिस्त से पोषित कलीसिया को एक अलग प्रतिमान दिखाने के लिए बुलाया गया है। ऐसा प्रतिमान जो मानवीय रिश्तों को बचाए रखे, अदृश्य को आवाज दे और सुनिश्चित करे कि सभी प्रक्रियाएं लोगों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने के लक्ष्य से संपादित की जाए। संत पापा लियो 14वें की 6 जून से 12 जून तक आयोजित स्पेन यात्रा की पृष्ठभूमि में विश्वव्यापी कैथलिक उदारता संस्था कारितास की स्पानी शाखा के महासचिव मरिया गोंजालेस से वैटिकन न्यूज के संवाददाताओं ने बातचीत की। संत पापा लियो अपनी स्पेन प्रेरित यात्रा के दौरान कारितास की स्पानी शाखा द्वारा बेघर लोगों की सेवा में संचालित सेडिया 24 होरास नामक समाज सेवा आश्रम की भी भेंट करेंगे। इस संदर्भ में किए प्रश्न के उत्तर में मरिया गोंजालेस ने कहा कि सबसे कमजोर लोगों के साथ संत पापा लियो की नजदीकी जागरूकता बढ़ाने और एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने का एक बड़ा मौका होगा जिस पर हमारे देश में कई लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि विश्व की दुर्बलता को अपनाने का संत पापा लियो का तरीका दान पुण्य में आगे बढ़ते रहने और यह समझने के लिए एक वास्तविक प्रेरणा होगी कि प्रेम का पहला परिणाम दूसरों के लिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करना और उनकी भलाई की कोशिश करना है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जनरल असेंबली हॉल में मंगलवार 2 जून को हुए गोपनीय मतदान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के उनके प्रतिद्वंद्वी आंद्रयास काकोरिस को 91 मत हासिल हुए। 193 सदस्य देशों वाले यूएन महासभा में कुल 190 वोट डाले गए और कोई मत अमान्य नहीं था। यूएन महासभा की वार्षिक अध्यक्षता भौगोलिक आधार पर 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी बारी से साझा की जाती है और सितंबर 2026 से आरंभ होने वाले 81वें सत्र की बागडोर की उम्मीदवारी इस वर्ष एशिया प्रशांत समूह के पास थी। राजनयिक रहमान ने निर्वाचित होने के बाद कहा कि वह इस दायित्व को एक ऐसे क्षण में संभालेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है, और इसके मद्देनजर उनका कार्यकाल भरोसे की बहाली, रूपांतरकारी बदलावों के प्रबंधन और सर्वजन के लिए वादों को साकार करने पर केंद्रित होगा। महासभा 81वें सत्र के लिए उनकी थीम है विश्वास की पुनर्व्यवस्था, परिवर्तन का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन की आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 विशिष्ट प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है: शांति व सुरक्षा, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी, जलवायु कार्यवाही व पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, उभरती टेक्नोलॉजी की संचालन व्यवस्था और यूएन सुधार। विदेश मंत्री रहमान अपना एक वर्षीय कार्यकाल 8 सितंबर को शुरू करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप का सामना करने के प्रयासों में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, अलबत्ता परीक्षण, निगरानी और सामुदायिक विश्वास जीतने में अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने इबोला प्रकोप से निपटने में DRC के साथ खड़े होने का संकल्प व्यक्त किया। डॉक्टर टेड्रोस DRC की यात्रा से लौटने के बाद बुधवार को जिनेवा में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए उम्मीद जताई, इस बीमारी के प्रकोप को एक बड़ी बढ़त मिल गई थी और हम अब भी पीछे हैं, लेकिन DRC सरकार के नेतृत्व में हम तेजी से बढ़त बना रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस का प्रकोप जारी है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार पिछले 2 सप्ताह के भीतर अब तक लगभग 900 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 220 से अधिक संदिग्ध मौतें हुई हैं। वहीं युगांडा में गुरुवार तक 7 मामलों की पुष्टि हुई है। WHO विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी उस समय होती है जब आप किसी संक्रमित की देखभाल में जुटे हों, और इसलिए परिवारों व मित्रों के लिए ये जरूरी है कि बीमार प्रियजन को छूने से बचा जाए। स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इबोला का फैलाव एक बेहद कठिन हालात में हो रहा है। DR कांगो का पूर्वी हिस्सा पहले से ही हिंसक टकराव, विस्थापन और भूख संकट से जूझ रहा है। इतुरी प्रांत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 12 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।
4: फिलहाल इबोला की बुंडी बुगियो प्रजाति से निपटने के लिए उपचार और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और संभावित उपायों की अभी पड़ताल की जा रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस हालात का जायजा लेने के लिए DR कांगो की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय समुदायों को यह संदेश देने के लिए यहां आए हैं कि वे अकेले नहीं हैं। UN स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने हथियारबंद गुटों से युद्ध विराम के लिए सहमत होने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जरूरतमंद आबादी तक पहुंच सकें और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके।
2: पिछले वर्ष विश्व भर में हिंसक टकराव संबंधी यौन हिंसा की 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2024 के आंकड़ों की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक संख्या है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और करिबियाई क्षेत्र में बलात्कार, यौन दास्ता व अगवा किए जाने को युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: संघर्ष ग्रस्त इलाकों में यौन हिंसा के विषय पर UN महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये आंकड़े एक बढ़ते वैश्विक रुझान को दर्शाते हैं। इसके साथ ही असुरक्षा विस्थापन मामलों में उछाल आ रहा है और जीवित बचे व्यक्तियों के लिए वित्तीय साधन डगमगा रहे हैं, जिससे इस संकट को और हवा मिल रही है। रिपोर्ट बताती है कि हिंसक टकराव से प्रभावित 21 देशों में सरकारी और गैर सरकारी तत्वों ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दास्ता, जबरन विवाह, तस्करी, अगवा किए जाने समेत अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। महिलाएं और लड़कियां मुख्य रूप से निशाना बनी, जबकि पुरुष और लड़के भी यौन हिंसा का शिकार हुए, अक्सर हिरासत केंद्रों में यातना के रूप में। इस दौरान भुक्तभोगियों की आयु 1 से 70 वर्ष तक दर्ज की गई।
4: रिपोर्ट के अनुसार संगठित आपराधिक समूहों समेत गैर सरकारी हथियारबंद गुटों ने समुदायों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करना जारी रखा। हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाकों में छोटे हथियारों की व्यापक उपलब्धता होने की वजह से यौन हिंसा को हवा मिलने की आशंका जताई गई है। मानवीय सहायता प्रयासों के लिए सीमित पहुंच होने, असुरक्षा और वित्तीय संसाधनों की किल्लत के कारण दुर्व्यवहार मामलों में जानकारी जुटा पाना कठिन हो गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों से रोकथाम, जवाबदेही और पीड़ितों के लिए समर्थन को मजबूती देने का आग्रह किया गया है। इसके लिए कई कदम उठाने पर बल दिया गया है। मानवीय सहायता तक बेरोकटोक पहुंच, जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूती और चिकित्सा, मनोसामाजिक व कानूनी सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता।
2: विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाने की संभावना लगभग 50% तक पहुंच गई है और यह आशंका समय के साथ बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के एक दौर की ओर बढ़ रही है और यह लगभग निश्चित है कि अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके नजदीक बने रहेंगे। विस्तार जानकारी के साथ पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के दौर की ओर बढ़ रही है और अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड या उसके करीब बना रहने की लगभग निश्चित संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए 2024 से अधिक गर्म होने की 86% संभावना है। इस अवधि में कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की सीमा को कुछ समय के लिए पार कर सकता है। गौरतलब है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा महत्वपूर्ण है और इसके लंबे समय तक पार होने पर चरम मौसम, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्रों के जोखिम बढ़ सकते हैं।
4: हालांकि अस्थायी रूप से इस सीमा का पार होना ये नहीं दर्शाता कि जलवायु लक्ष्यों

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। जर्मनी के कैथोलिक विद्यार्थियों के संघों के प्रतिनिधि छात्रों ने शुक्रवार को वेटिकन में संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। जर्मन कैथोलिक छात्रों का अभिवादन कर संत पापा लियो ने कहा, आद पेत्री सेदम अर्थात पेत्रुस के सिंहासन रोम तक आने का आपका फैसला उस कैथोलिक विश्वास से प्रेरित है जो आपकी प्रभु येसु के शिष्यों के तौर पर जोड़ने वाली सहभागिता और आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों को परिभाषित करता है। जर्मन कैथोलिक संघों के छात्रों की कैथोलिक अस्मिता के बारे में संत पापा ने कहा कि विश्वास में उनका दृढ़ समर्पण उनके संघों के 4 सिद्धांतों में समाहित है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, और ये हैं धर्म, विज्ञान, मैत्री और मातृभूमि। संत पापा ने कहा, अतीत की तानाशाही और विचारधाराओं के समक्ष कैथोलिक धर्म कभी भी सिर्फ दिखावा या लेबल नहीं रहा, बल्कि यह विश्वविद्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर साझेदारी का एक तरीका रहा है। सुसमाचारी खमीर की तरह आपका भ्रातृ संघ वैज्ञानिक और राजनैतिक वातावरण सहित अलग अलग अकादमिक, व्यावसायिक और सामाजिक दायरों में भी बढ़ता रहता है। आपकी गतिविधियों का सामुदायिक पहलू न सिर्फ आपके देश को बल्कि संपूर्ण यूरोप को लाभ पहुंचाता है जिसका केंद्र जर्मनी है। संत पापा ने कहा कि इस भौगोलिक केंद्रीयता के साथ आप उचित ही मानव व्यक्ति की सांस्कृतिक केंद्रीयता को जोड़ते हैं जो ईश्वर की सृष्टि और स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। उन्होंने छात्र संघ के सदस्यों से कहा कि शिल्प वैज्ञानिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करते हुए आपको हमारी आम इंसानियत के अध्ययन और उसे प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे तर्क का इस्तेमाल होता है वैसे ही विश्वास की रोशनी भी आज के समय के वादों और धोखे को रोशन करती है और हर इंसान से एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहायता देने का हर संभव प्रयास करने की मांग करती है। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न छात्रों से संत पापा ने कहा कि इनसे उन्हें अवश्य ही यह अनुभव हुआ होगा कि यह सिर्फ एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि एक बुलाहट या मिशन का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि सत्य की तलाश एक सर्वोत्तम चीज है जिसकी चाह रखना और जिसे प्रोत्साहन देना आवश्यक है। जर्मनी के समस्त कैथोलिक छात्रों को संत पापा लियो 14वें ने आमंत्रित किया कि वे यह स्वीकार करें कि संस्कृति मानवता की भलाई है, सत्य हमें स्वतंत्र करता जबकि झूठ और मिथ्यावादिता नामों और चीजों को भ्रष्ट कर देती है। उन्होंने कहा, लोगों को और विशेष रूप से निम्न, गरीब या बीमार लोगों को अमानवीय बनाने वाली चीजों के समक्ष मैं आपसे ख्रिस्तीय मानवतावाद के गवाह बनने का आग्रह करता हूँ। संत पापा ने कहा, इस संदर्भ में आपके एसोसिएशन के एक जाने माने पूर्व सदस्य संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की कही बात पर गहराई से विचार करने हेतु आपको आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने 2011 में बुंडेस्टाग को संबोधन में कहा था, एक सुसंगत इंसान की इकोलॉजी विकसित करें, इंसान का भी एक स्वभाव है जिसका सम्मान अनिवार्य है। वेटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ जून माह के अंत में कार्डिनल मंडल सभा में भाग लेने वाले कार्डिनलों को लिखे एक पत्र में कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे ने संत पापा पॉल षष्ठम भवन में आयोजित 4 कार्य शिविरों के शीर्षकों की घोषणा की। संत

पापा लियो 14वें द्वारा 26, 27 और 29 जून को बुलाई गई कार्डिनल मंडल की सभा में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और स्थानीय कलीसियाओं के जीवन पर विचार विमर्श के साथ साथ संत पापा के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर चर्चा तथा धर्म सभा में चर्चित विषयों को लागू करना शामिल होगा। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे द्वारा 3 जून को कार्डिनलों को प्रेषित पत्र में उक्त विषयों की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि कार्डिनल मंडल की उक्त सभा का लक्ष्य आज कलीसिया के जीवन और मिशन संबंधी विशेष महत्व के मुद्दों पर परस्पर श्रवण, आपसी समझदारी और साझा चिंतन के स्थान के रूप में कार्य करना है। कार्डिनल रे ने कहा कि उक्त कंसिस्ट्री का पहला सत्र अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और स्थानीय कलीसियाओं की वास्तविकता पर और दूसरा और तीसरा सत्र 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर केंद्रित रहेगा। इस विश्व पत्र का 5वां अध्याय विचाराधीन होगा, जिसका शीर्षक है सत्ता की संस्कृति और प्रेम की सभ्यता। उन्होंने कहा कि इस अध्याय में संत पापा लियो स्मरण दिलाते हैं कि ध्रुवीकरण, हिंसा और बढ़ते संघर्ष से चिन्हित दुनिया में शांति अन्य मुद्दों के बीच केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सामान्य भलाई के लिए एक शर्त है और लोगों की नैतिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया द्वारा 4 जून को मनाए गए ख्रीस्त देह पर्व पर संत पापा लियो 14वें ने 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर ख्रिस्तियों के लिए यूखरिस्त के महत्व को समझाया। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, यूखरिस्त में हम इस यथार्थ का स्पष्ट रूप देखते हैं कि हम ख्रीस्त की कलीसिया हैं, उनके सदस्य हैं, उनका शरीर हैं। हम उनमें भाई बहन हैं और भले ही हम कई और अलग अलग हैं, ख्रीस्त में हम सब एक हैं। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, यूखरिस्त हमें न्याय और साझेदारी के प्रति उदार बनाकर उन लोगों के प्रति विशेष चिंता रखना सिखाता है जो गरीबी अथवा हाशिए पर रहने के बोझ के तले दबे हैं। और अपने तीसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, ऐसी स्थिति में जब नए आर्थिक और तकनीकी नेटवर्क बहिष्कार, अलगाव और निर्भरता उत्पन्न करते हैं, तब यूखरिस्त से पोषित कलीसिया को एक अलग प्रतिमान दिखाने के लिए बुलाया गया है। ऐसा प्रतिमान जो मानवीय रिश्तों को बचाए रखे, अदृश्य को आवाज दे और सुनिश्चित करे कि सभी प्रक्रियाएं लोगों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने के लक्ष्य से संपादित की जाए। संत पापा लियो 14वें की 6 जून से 12 जून तक आयोजित स्पेन यात्रा की पृष्ठभूमि में विश्वव्यापी कैथलिक उदारता संस्था कारितास की स्पानी शाखा के महासचिव मरिया गोंजालेस से वैटिकन न्यूज के संवाददाताओं ने बातचीत की। संत पापा लियो अपनी स्पेन प्रेरित यात्रा के दौरान कारितास की स्पानी शाखा द्वारा बेघर लोगों की सेवा में संचालित सेदिया 24 होरास नामक समाज सेवा आश्रम की भी भेंट करेंगे। इस संदर्भ में किए प्रश्न के उत्तर में मरिया गोंजालेस ने कहा कि सबसे कमजोर लोगों के साथ संत पापा लियो की नजदीकी जागरूकता बढ़ाने और एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने का एक बड़ा मौका होगा जिस पर हमारे देश में कई लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि विश्व की दुर्बलता को अपनाने का संत पापा लियो का तरीका दान पुण्य में आगे बढ़ते रहने और यह समझने के लिए एक वास्तविक प्रेरणा होगी कि प्रेम का पहला परिणाम दूसरों के लिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करना और उनकी भलाई की कोशिश करना है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है।
1: My sovereign liege, two women stand and both

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे, तीस

0: धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें और पत्रकारों को लेकर ईटा एयरवेज विमान आज सुबह 8:15 बजे रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से स्पेन के लिए रवाना हुआ। संत पापा ने विमान में विमान चालकों का अभिवादन किया और विमान में अपने साथ जा रहे पत्रकारों का भी अभिवादन किया। स्पेन के लिए अपनी यात्रा के दौरान इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए संत पापा लियो ने इटली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सर्जो मत्तरेला को अपने अभिवादन में इटली देश की भलाई और खुशहाली के लिए दिल से प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया। टेलीग्राम में उन्होंने याद दिलाया कि स्पेन की उनकी यात्रा कुंवारी माता मरियम की ममता भरी नजरों में है, जो हमारा स्वागत करती हैं और हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं, जो सभी लोगों के लिए एकता और उम्मीद का जरिया है। स्पेन मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार एक देश है। स्पेन का सबसे बड़ा भाग इबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसके क्षेत्र में अटलांटिक महासागर के कनारिया द्वीप समूह, मध्य सागर में बलेयार द्वीप समूह और अफ्रीका में सेउता और मेलिया के स्वायत्त नगर भी शामिल हैं। देश की मुख्य भूमि दक्षिण में जिब्राल्टर से लगती है। इसके दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर में फ्रांस, अंडेरा और बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर है। 5,05,990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ स्पेन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 4.74 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य है। स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा नगर मैड्रिड है। मैड्रिड के अडोल्फो सुआरेज बजारस हवाई अड्डे पर स्पेन के झंडों के साथ वाटिकन के झंडे लहरा रहे थे, जहां संत पापा 2 घंटे की विमान यात्रा के बाद सुबह 10:15 बजे पहुंचे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के दौरे के 15 साल बाद संत पापा लियो 14वें स्पेन की प्रेरित की यात्रा कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज रस्मों के अनुसार सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और साथ ही स्पेन और अंडोरा की रियासत के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष पियेरो पियोपो और स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वालाडोलिड महाधर्माध्यक्ष लुइस जेबियर ग्रासिया भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया ने किया। वे दोनों मिलिट्री सम्मान के लिए पोडियम पर चढ़े। संत पापा को झंडों का सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संत पापा लियो 14वें ने कैटवॉक की लाल रेलिंग पर चलते हुए प्रतिनिधि मंडल का अभिवादन किया, फिर एक छोटी सी प्राइवेट मीटिंग के लिए शाही परिवार के साथ हॉल ऑफ ऑनर में गए। स्पैनिश झंडे पकड़े हुए कई बच्चों ने संत पापा का गर्मजोशी से स्वागत किया। संत पापा उनकी बात सुनने के लिए रुके और उन्हें वहां माता मरियम की एक मूर्ति सहित अनेक तोहफे मिले। मैड्रिड में संत पापा लियो का कार्यक्रम राजभवन में एक आधिकारिक स्वागत समारोह के साथ शुरू हुआ। दोपहर में स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतिसिया से औपचारिक मुलाकात हुई। दोपहर 1 बजे संत पापा लियो 14वें ने राजभवन में नागर समाज के अधिकारियों और राजनायिकों को संबोधित किया।
3: Majestades, altezas reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro.
4: मैं आपके साथ मुलाकात करने के अवसर के लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूं और स्पेन में प्रेरित यात्रा हेतु निमंत्रण के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह यात्रा कई चरणों में होगा और हर चरण में इस महान देश की बहुमुखी समृद्धि का एक पहलू दिखेगा जिसने लगभग 2000 सालों से सुसमाचार का स्वागत किया है। परंपरा ने हमेशा ही इबेरियन प्रायद्वीप में शुरुआती सुसमाचार प्रचार को प्रेरित याकूब के धर्मोपदेश से जोड़ा है। इस मेल का ई शास्त्रीय महत्व है क्योंकि यह स्थानीय कलीसिया की इस चेतना को दर्शाता है कि वह पेंतेकोस्त से शुरू हुए प्रेरितों के मिशन के साथ जुड़ा है। पोप ने देश के अतीत पर गौर करते हुए कहा, आपके लोगों की विविध पहचान को खत्म किए बिना ख्रिस्ते विश्वास और इस भूमि के बीच पुराने रिश्ते ने आपकी संस्कृति को गहराई से आकार दिया है और आज एक मानव परिवार के रूप में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बीच उम्मीद एवं दिशा का एक माध्यम बन गया है। संत पापा ने उन लोकप्रिय भक्तों की याद की जो हर शहर एवं कस्बों में वर्ष की गति एवं जीवन की विभिन्न पृष्ठभूमियों में मुक्ति के सच्चे साधन हैं। कलात्मक एवं संगीत की विरासत के साथ साथ भाईचारे और उदास संघों के द्वारा वे प्रभु येसु और अपने लोगों के बीच फलप्रद मुलाकात के गवाह हैं, जो एक उत्साही प्रजा है जो जीवन से प्यार करती और उसे व्यक्त करती है। पोप ने अपनी प्रेरित यात्रा का उद्देश्य बतलाते हुए कहा, मैं विश्वासों के बीच सुसमाचार के प्रति एक नवीकृत निष्ठा को पक्का करने, बढ़ावा देने और स्थापित करने आया हूँ। साथ ही इस देश के अलग अलग हिस्सों के बीच गहरी मेल मिलाप एवं सहयोग को भी प्रोत्साहित करने आया हूँ। वास्तव में आपका अपना इतिहास बतलाता है कि टकराव नहीं बल्कि मिलने जुलने की संस्कृति ही स्थिरता एवं खुशहाली को बढ़ावा दे सकता है। असल में शांति का संदेश जो दुर्भाग्य से आजकल कुछ लोगों को भोलेपन की तरह और कुछ लोगों को टकराव वाला लगता है, उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो खुद को पहले से ही बनी सोच में बंद नहीं रखते बल्कि सच्चाई के लिए खुले रहते हैं। सिर्फ शब्दों, तस्वीरों एवं बयानबाजी के दायरे में रहना खतरनाक है। पोप फ्रांसिस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविकताएं विचारों से बड़ी होती हैं। संत पापा ने स्पेन के 2 महान संतों का उदाहरण देते हुए कहा, इस बारे में मैं इस देश के 2 महान लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने 5 सदियों से कलीसिया के जीवन और कई लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को बेहतर बनाया है, संत जॉन ऑफ द क्रॉस और अविला की संत तेरेसा। दिव्य रहस्य के लिए जुनून ने उन दोनों को दोस्त बना दिया। उनका रहस्यवाद खुली आंखों वाला है, यानी इतिहास से अलग नहीं बल्कि मुद्दों की जड़ और सच्चाई के दिल तक पहुंचने वाला। अजीब बात यह है कि रोशनी की अपनी प्यास में उन्होंने अंधेरे की तारीफ करना सीखा। सुखद रात एक ऐसा समय जब आत्मा उन चीजों से मुक्त हो जाती है जिन्हें वह जानती और रखती है। आज भी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती और जो कई लोगों में समझ के अंधेरे एवं भावनाओं की हिंसा जगाती है वह है अनजानापन, जिसके सामने हम बिना माप के खोए हुए महसूस करते हैं, मानो कि हमने अपनी दिशा खो दी हो। इसलिए सार्वजनिक जीवन में भी हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सकें। संत पापा ने कहा, हमारा समय जो भयंकर असंतुलन एवं झगड़ों से हिला हुआ लगता है, अपनी गहराई से शांति, मानव और उसकी गरिमा की एक नई समझ, प्यार की सभ्यता के लिए पुकार रहा है। संत तेरेसा इसी प्रक्रिया को आंतरिक गढ़ की छवि का इस्तेमाल करके बताती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में सबसे अंदर के कमरे की ओर बढ़ता है, यानी अपने दिल की ओर, सच्चाई की पौत्र जगह की ओर, जगह बड़ी होती जाती है, दिमाग खुलता जाता है, चुनौतियां दूर हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, दूसरों को अपनी जगह मिलती है और पूरा संसार एक घर बन जाता है। यह खुद से भागने जैसा नहीं है बल्कि बिल्कुल अलग और हमेशा नया के लिए एक बड़ा खुलापन है जो तब मिलता है जब हम खुद में लौटते हैं। मानव का यही पहलू वजह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की आज़ादी की रक्षा की जानी चाहिए। आज ध्रुवीकरण की आग को हवा देकर प्रसिद्धि पाने का लालच कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हमें संस्कृति, आंतरिक सोच और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है। हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। फिर भी इन अंधेरी रातों में सच्चाई के प्रति वफादार पुरुषों और महिलाओं को एक कमरे से दूसरे कमरे में तब तक ढकेला जाता है जब तक कि उनके अंतःकरण में इंसाफ एवं शांति नहीं आ जाती। उनकी स्वतंत्रता से ही हम आज़ाद होना सीखते हैं। संत पापा ने स्पेन की कार्तिकलिसिया पर गौर करते हुए कहा, कार्तिकलिसिया मानव दिल की प्यास की सेवा है, या एक ऐसी सेवा है जो थोपने से नहीं बल्कि कई शहीदों और संतों द्वारा साबित की गई सुसमाचार की गवाही है। आज कलीसिया मेल मिलाप और शांति की तलाश में लोगों के भविष्य की सेवा में खुद को लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सत्य के प्रेम के लिए मैं सभी को अपने समाज की सच्चाई एवं इतिहास की बांटने वाली एवं ध्रुवीकरण करने वाली कहानियों को दूर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि मुश्किलों के सही समझ के द्वारा व्यर्थ सहज बातों को दूर किया जा सके। नई तकनीकी ने एक बनावटी माहौल बना दिया है जहाँ हमारी बुनियादी पसंद की परीक्षा होती है। भेदभाव बढ़ जाते हैं, आलोचनात्मक सोच कमजोर हो जाती है और हावी होने वाले हित मौत की कामनाएं फैलाते हैं। फिर भी पोप आशा दिलाते हैं कि अच्छाई जीत एवं फैल सकती है। सुरक्षा, जिसको हम अक्सर हथियारों और दीवारों में पाने की उम्मीद करते हैं, असल में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, साथ मिलकर बढ़ना, कंधे से कंधा मिलाकर सीखने से मिलती है। आपका अपना इतिहास इसका गवाह है। उदाहरण के लिए, इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लाम की मौजूदगी एक लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सच्चाई रही है। उस समय न सिर्फ टकराव था बल्कि ख्रिस्तियों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच सच्चाई के अर्थ पर संपर्क, बातचीत और संवाद के लिए जगह बनाने की कोशिश की गई। संत इग्नासियस लॉयला का उदाहरण देते हुए पोप ने कहा, इस देश के एक और नेक बेटे ने हमें सिखाया है कि मुश्किलें और नाकामियां हमें फिर से सोचने का मौका देती हैं। उन्होंने समझदारी और चिंतन के माध्यम से अपने दिल की उदासी और सांत्वना को सच माना, जिससे उन्हें हथियारों के बजाय शांति और ताकतवर लोगों के बजाय संतों को ज्यादा पसंद करने का मौका मिला। वे समझ गए थे कि जिस अच्छाई की ओर खींचे चले आ रहे थे वह धोखा नहीं थी, और इसलिए उनका संकट एक कृपा बन गया। ऐसा ही उन नई चीजों के लिए भी हो सकता है जो आज हमें परेशान करती हैं और अक्सर फूट डालती हैं। संत पापा ने आगे कहा, हमें बेइज्जत करने वाले या दुश्मनी भरे शब्दों से बचना चाहिए, बल्कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो प्रकाश डाले और स्पष्टता जो नई संभावनाओं को खोले। हम सहज उत्साह को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बजाय आइए हम इन मानकों को जिम्मेदार योजना, मानवीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन, सबसे कमजोर लोगों को शामिल करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और न्याय तथा शांति की दिशा में अनुसंधान एवं उद्योग का मार्गदर्शन करने जैसे कार्यों में बदलें। अंत में संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा, मैं आपके देश के अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं बहुपक्षवाद को ईमानदारी से पालन करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों के बीच शांति और एकजुटता के लिए एक सक्रिय प्रतिबद्धता में दिखता है। साथ ही मैं आपको अपने देश में बातचीत एवं नागरिक दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ईश्वर स्पेन को आशीष प्रदान
3: करें।
2: आज शाम 6 बजे संत पापा लियो 14 में सोशल प्रोजेक्ट से दिया 24 होरस में काम करने वालों और मदद पाने वालों से मुलाकात करेंगे, और शाम को 8:30 बजे संत पापा लियो मैड्रिड के प्लाजा दे लीमा में युवाओं के साथ एक जागरण

के बाद कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज के पार्लियामेंट के सदस्यों को संबोधित करेंगे। फिर वे स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के मुख्यालय में धर्माध्यक्षों से मिलेंगे। शाम को संत पापा बर्नियो स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय से मिलेंगे। मंगलवार को संत पापा लियो बार्सिलोना जाएंगे। वे बार्सिलोना के महागिरजाघर में दोपहर के देवदूत प्रार्थना की अगुवाई करेंगे और शाम को लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। बुधवार को संत पापा एक जेल का दौरा करेंगे, मोंटेसेरात के एबे में रोजरी प्रार्थना करेंगे और वहां बेनेडिक्टन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। फिर बार्सिलोना लौटकर धर्म प्रांतीय चैरिटी और कल्याणकारी संस्थाओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। बुधवार शाम प्रेरितिक यात्रा का एक खास क्षण होगा जब संत पापा लियो 14वें सागर्दा फामिलिया महागिरजाघर जाएंगे, जिसे मशहूर कातालान आर्किटेक्ट आदरणीय अंतोनी गाउदी ने डिजाइन किया था, जिसकी विरासत को इस साल उनकी मौत की 100वीं सालगिरह पर याद किया जा रहा है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 2010 में इस महागिरजाघर को आशीष दिया था और संत पापा लियो 14वें महागिरजाघर के सबसे ऊंचे टावर येसु ख्रीस्त टावर को आशीष देंगे। गुरुवार को संत पापा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड के लिए उड़ान भरेंगे, जो यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। लास पाल्मास डेन ग्रैन कनारिया और सांता क्रूज डे टेनरिफ में संत पापा मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और प्रवासी स्वागत केंद्र और मदद के लिए फ्रंट लाइन में काम करने वालों से मिलेंगे। संत पापा अपनी यात्रा के दौरान स्पेन में पुरोहितों द्वारा शोषण के शिकार लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया में आई खबरों के बाद वाटिकन प्रेस ऑफिस के टेलीग्राम प्रोफाइल के जरिए वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह मीटिंग स्पेन की कलीसिया ने आयोजित की है, पीड़ितों, उनकी इच्छाओं और उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए मीटिंग के बाद ही यह जानकारी दी जा सकती है। शोषण का मुद्दा स्पेन की कलीसिया के लिए एक दर्दनाक मुद्दा बना हुआ है, जिसने हाल के सालों में रोकथाम और मुआवजे के मकसद से कई कोशिशें की हैं। हाल ही में मार्च में स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, धर्मसंघियों के सम्मेलन और मिनिस्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंसी के बीच इस दर्दनाक सच्चाई को न्याय और सत्य के साथ सुलझाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। संत पापा के दौरे के पहले कई स्थानीय मीडिया ने यह मुद्दा उठाया है और कुछ ने बताया है कि स्पेन के कई पीड़ितों ने संत पापा को चिट्ठियां भेजकर उनसे मिलने का आग्रह किया है। संत पापा लियो 14वें बंद कमरे में उनसे बातचीत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के परमाध्यक्षीय काल में 2008 में अमेरिका, साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दौरे के दौरान पहले से ही देखा जा चुका है। और संत पापा फ्रांसिस के समय चिली, आयरलैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम के दौरे के दौरान भी ऐसी ही सभा हुई थी। कनारी आइलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें शुक्रवार शाम को रोम लौटने के लिए अपने विमान में सवार होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें और पत्रकारों को लेकर ईटा एयरवेज विमान आज सुबह 8:15 बजे रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से स्पेन के लिए रवाना हुआ। संत पापा ने विमान में विमान चालकों का अभिवादन किया और विमान में अपने साथ जा रहे पत्रकारों का भी अभिवादन किया। स्पेन के लिए अपनी यात्रा के दौरान इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए संत पापा लियो ने इटली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सर्जो मत्तरेला को अपने अभिवादन में इटली देश की भलाई और खुशहाली के लिए दिल से प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया। टेलीग्राम में उन्होंने याद दिलाया कि स्पेन की उनकी यात्रा कुंवारी माता मरियम की ममता भरी नजरों में है, जो हमारा स्वागत करती हैं और हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं, जो सभी लोगों के लिए एकता और उम्मीद का जरिया है। स्पेन मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार एक देश है। स्पेन का सबसे बड़ा भाग इबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसके क्षेत्र में अटलांटिक महासागर के कनारिया द्वीप समूह, मध्य सागर में बलेयार द्वीप समूह और अफ्रीका में सेउता और मेलिया के स्वायत्त नगर भी शामिल हैं। देश की मुख्य भूमि दक्षिण में जिब्राल्टर से लगती है। इसके दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर में फ्रांस, अंडेरा और बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर है। 5,05,990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ स्पेन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 4.74 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य है। स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा नगर मैड्रिड है। मैड्रिड के अडोल्फो सुआरेज बजारस हवाई अड्डे पर स्पेन के झंडों के साथ वाटिकन के झंडे लहरा रहे थे, जहां संत पापा 2 घंटे की विमान यात्रा के बाद सुबह 10:15 बजे पहुंचे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के दौरे के 15 साल बाद संत पापा लियो 14वें स्पेन की प्रेरित की यात्रा कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज रस्मों के अनुसार सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और साथ ही स्पेन और अंडोरा की रियासत के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष पियेरो पियोपो और स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वालाडोलिड महाधर्माध्यक्ष लुइस जेबियर ग्रासिया भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया ने किया। वे दोनों मिलिट्री सम्मान के लिए पोडियम पर चढ़े। संत पापा को झंडों का सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संत पापा लियो 14वें ने कैटवॉक की लाल रेलिंग पर चलते हुए प्रतिनिधि मंडल का अभिवादन किया, फिर एक छोटी सी प्राइवेट मीटिंग के लिए शाही परिवार के साथ हॉल ऑफ ऑनर में गए। स्पैनिश झंडे पकड़े हुए कई बच्चों ने संत पापा का गर्मजोशी से स्वागत किया। संत पापा उनकी बात सुनने के लिए रुके और उन्हें वहां माता मरियम की एक मूर्ति सहित अनेक तोहफे मिले। मैड्रिड में संत पापा लियो का कार्यक्रम राजभवन में एक आधिकारिक स्वागत समारोह के साथ शुरू हुआ। दोपहर में स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतिसिया से औपचारिक मुलाकात हुई। दोपहर 1 बजे संत पापा लियो 14वें ने राजभवन में नागर समाज के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित किया।
3: Majestades, altezas reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro.
4: मैं आपके साथ मुलाकात करने के अवसर के लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूं और स्पेन में प्रेरित यात्रा हेतु निमंत्रण के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह यात्रा कई चरणों में होगा और हर चरण में इस महान देश की बहुमुखी समृद्धि का एक पहलू दिखेगा जिसने लगभग 2000 सालों से सुसमाचार का स्वागत किया है। परंपरा ने हमेशा ही इबेरियन प्रायद्वीप में शुरुआती सुसमाचार प्रचार को प्रेरित याकूब के धर्मोपदेश से जोड़ा है। इस मेल का ई शास्त्रीय महत्व है क्योंकि यह स्थानीय कलीसिया की इस चेतना को दर्शाता है कि वह पेंतेकोस्त से शुरू हुए प्रेरितों के मिशन के साथ जुड़ा है। पोप ने देश के अतीत पर गौर करते हुए कहा, आपके लोगों की विविध पहचान को खत्म किए बिना ख्रिस्त विश्वास और इस भूमि के बीच पुराने रिश्ते ने आपकी संस्कृति को गहराई से आकार दिया है और आज एक मानव परिवार के रूप में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बीच उम्मीद एवं दिशा का एक माध्यम बन गया है। संत पापा ने उन लोकप्रिय भक्तों की याद की जो हर शहर एवं कस्बों में वर्ष की गति एवं जीवन की विभिन्न पृष्ठभूमियों में मुक्ति के सच्चे साधन हैं। कलात्मक एवं संगीत की विरासत के साथ साथ भाईचारे और उदास संघों के द्वारा वे प्रभु येसु और अपने लोगों के बीच फलप्रद मुलाकात के गवाह हैं, जो एक उत्साही प्रजा है जो जीवन से प्यार करती और उसे व्यक्त करती है। पोप ने अपनी प्रेरित यात्रा का उद्देश्य बतलाते हुए कहा, मैं विश्वासियों के बीच सुसमाचार के प्रति एक नवीकृत निष्ठा को पक्का करने, बढ़ावा देने और स्थापित करने आया हूँ। साथ ही इस देश के अलग अलग हिस्सों के बीच गहरी मेल मिलाप एवं सहयोग को भी प्रोत्साहित करने आया हूँ। वास्तव में आपका अपना इतिहास बतलाता है कि टकराव नहीं बल्कि मिलने जुलने की संस्कृति ही स्थिरता एवं खुशहाली को बढ़ावा दे सकता है। असल में शांति का संदेश जो दुर्भाग्य से आजकल कुछ लोगों को भोलेपन की तरह और कुछ लोगों को टकराव वाला लगता है, उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो खुद को पहले से ही बनी सोच में बंद नहीं रखते बल्कि सच्चाई के लिए खुले रहते हैं। सिर्फ शब्दों, तस्वीरों एवं बयानबाजी के दायरे में रहना खतरनाक है। पोप फ्रांसिस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविकताएं विचारों से बड़ी होती हैं। संत पापा ने स्पेन के 2 महान संतों का उदाहरण देते हुए कहा, इस बारे में मैं इस देश के 2 महान लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने 5 सदियों से कलीसिया के जीवन और कई लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को बेहतर बनाया है, संत जॉन ऑफ द क्रॉस और अविला की संत तेरेसा। दिव्य रहस्य के लिए जुनून ने उन दोनों को दोस्त बना दिया। उनका रहस्यवाद खुली आंखों वाला है, यानी इतिहास से अलग नहीं बल्कि मुद्दों की जड़ और सच्चाई के दिल तक पहुंचने वाला। अजीब बात यह है कि रोशनी की अपनी प्यास में उन्होंने अंधेरे की तारीफ करना सीखा। सुखद रात एक ऐसा समय जब आत्मा उन चीजों से मुक्त हो जाती है जिन्हें वह जानती और रखती है। आज भी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती और जो कई लोगों में समझ के अंधेरे एवं भावनाओं की हिंसा जगाती है वह है अनजानापन, जिसके सामने हम बिना माप के खोए हुए महसूस करते हैं, मानो कि हमने अपनी दिशा खो दी हो। इसलिए सार्वजनिक जीवन में भी हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सकें। संत पापा ने कहा, हमारा समय जो भयंकर असंतुलन एवं झगड़ों से हिला हुआ लगता है, अपनी गहराई से शांति, मानव और उसकी गरिमा की एक नई समझ, प्यार की सभ्यता के लिए पुकार रहा है। संत तेरेसा इसी प्रक्रिया को आंतरिक गढ़ की छवि का इस्तेमाल करके बताती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में सबसे अंदर के कमरे की ओर बढ़ता है, यानी अपने दिल की ओर, सच्चाई की पौत्र जगह की ओर, जगह बड़ी होती जाती है, दिमाग खुलता जाता है, चुनौतियां दूर हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, दूसरों को अपनी जगह मिलती है और पूरा संसार एक घर बन जाता है। यह खुद से भागने जैसा नहीं है बल्कि बिल्कुल अलग और हमेशा नया के लिए एक बड़ा खुलापन है जो तब मिलता है जब हम खुद में लौटते हैं। मानव का यही पहलू वजह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की आज़ादी की रक्षा की जानी चाहिए। आज ध्रुवीकरण की आग को हवा देकर प्रसिद्धि पाने का लालच कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हमें संस्कृति, आंतरिक सोच और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है। हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। फिर भी इन अंधेरी रातों में सच्चाई के प्रति वफादार पुरुषों और महिलाओं को एक कमरे से दूसरे कमरे में तब तक ढकेला जाता है जब तक कि उनके अंतःकरण में इंसाफ एवं शांति नहीं आ जाती। उनकी स्वतंत्रता से ही हम आज़ाद होना सीखते हैं। संत पापा ने स्पेन की कात्तिकलिसिया पर गौर करते हुए कहा, कात्तिकलिसिया मानव दिल की प्यास की सेवा है, या एक ऐसी सेवा है जो थोपने से नहीं बल्कि कई शहीदों और संतों द्वारा साबित की गई सुसमाचार की गवाही है। आज कलीसिया मेल मिलाप और शांति की तलाश में लोगों के भविष्य की सेवा में खुद को लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सत्य के प्रेम के लिए मैं सभी को अपने समाज की सच्चाई एवं इतिहास की बांटने वाली एवं ध्रुवीकरण करने वाली कहानियों को दूर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि मुश्किलों के सही समझ के द्वारा व्यर्थ सहज बातों को दूर किया जा सके। नई तकनीकी ने एक बनावटी माहौल बना दिया है जहाँ हमारी बुनियादी पसंद की परीक्षा होती है। भेदभाव बढ़ जाते हैं, आलोचनात्मक सोच कमजोर हो जाती हैं और हावी होने वाले हित मौत की कामनाएं फैलाते हैं। फिर भी पोप आशा दिलाते हैं कि अच्छाई जीत एवं फैल सकती है। सुरक्षा, जिसको हम अक्सर हथियारों और दीवारों में पाने की उम्मीद करते हैं, असल में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, साथ मिलकर बढ़ना, कंधे से कंधा मिलाकर सीखने से मिलती है। आपका अपना इतिहास इसका गवाह है। उदाहरण के लिए इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लाम की मौजूदगी एक लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सच्चाई रही है। उस समय न सिर्फ टकराव था बल्कि ख्रिस्तियों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच सच्चाई के अर्थ पर संपर्क, बातचीत और संवाद के लिए जगह बनाने की कोशिश की गई। संत इग्नासियस लॉयला का उदाहरण देते हुए पोप ने कहा, इस देश के एक और नेक बेटे ने हमें सिखाया है कि मुश्किलें और नाकामियां हमें फिर से सोचने का मौका देती हैं। उन्होंने समझदारी और चिंतन के माध्यम से अपने दिल की उदासी और सांत्वना को सच माना, जिससे उन्हें हथियारों के बजाय शांति और ताकतवर लोगों के बजाय संतों को ज्यादा पसंद करने का मौका मिला। वे समझ गए थे कि जिस अच्छाई की ओर खींचे चले आ रहे थे वह धोखा नहीं थी और इसलिए उनका संकट एक कृपा बन गया। ऐसा ही उन नई चीजों के लिए भी हो सकता है जो आज हमें परेशान करती हैं और अक्सर फूट डालती हैं। संत पापा ने आगे कहा, हमें बेइज्जत करने वाले या दुश्मनी भरे शब्दों से बचना चाहिए, बल्कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो प्रकाश डाले और स्पष्टता जो नई संभावनाओं को खोले। हम सहज उत्साह को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बजाय आइए हम इन मानकों को जिम्मेदार योजना, मानवीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन, सबसे कमजोर लोगों को शामिल करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और न्याय तथा शांति की दिशा में अनुसंधान एवं उद्योग का मार्गदर्शन करने जैसे कार्यों में बदलें। अंत में संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा, मैं आपके देश के अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं बहुपक्षवाद को ईमानदारी से पालन करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों के बीच शांति और एकजुटता के लिए एक सक्रिय प्रतिबद्धता में दिखता है। साथ ही मैं आपको अपने देश में बातचीत एवं नागरिक दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ईश्वर स्पेन को आशीष प्रदान करें।
3: Que Dios bendiga España.
2: आज शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें सोशल प्रोजेक्ट से दिया 24 होरस में काम करने वालों और मदद पाने वालों से मुलाकात करेंगे और शाम को 8:30 बजे संत पापा लियो मैड्रिड के प्लाजा दे लीमा में युवाओं के साथ एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। अगले दिन कॉर्पस क्रिस्टी के त्यौहार पर संत पापा मशहूर प्लाजा दे सिबेलस में मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे, जिसमें कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस भी होगा। उसी दिन संत पापा संत अगुस्टिन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मिलेंगे और बाद में मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, बिजनेस और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। सोमवार को संत पापा सुबह स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज से मिलेंगे। उसके बाद कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज के पार्लियामेंट के सदस्यों को संबोधित करेंगे। फिर वे स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के मुख्यालय में धर्माध्यक्षों से मिलेंगे। शाम को संत पापा बर्नियो स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय से मिलेंगे। मंगलवार को संत पापा लियो बार्सिलोना जाएंगे। वे बार्सिलोना के महागिरजा घर में दोपहर के देवदूत प्रार्थना की अगुवाई करेंगे और शाम को लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। बुधवार को संत पापा एक जेल का दौरा करेंगे। मोंटेसेरात के एबे में रोजरी प्रार्थना करेंगे और वहां बेनेडिक्टन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। फिर बार्सिलोना लौटकर धर्म प्रांतीय चैरिटी और कल्याणकारी संस्थाओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। बुधवार शाम प्रेरितिक यात्रा का एक खास क्षण होगा जब संत पापा लियो 14वें सागर दा फामिलिया महागिरजाघर जाएंगे, जिसे मशहूर कातालान आर्किटेक्ट आदरणीय अंतोनी गाउदी ने डिजाइन किया था, जिसकी विरासत को इस साल उनकी मौत की 100वीं सालगिरह पर याद किया जा रहा है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 2010 में इस महागिरजाघर को आशीष दिया था और संत पापा लियो 14वें महागिरजाघर के सबसे ऊंचे टावर येसु ख्रीस्त टावर को आशीष देंगे। गुरुवार को संत पापा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड के लिए उड़ान भरेंगे, जो यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। लास पाल्मास डेन ग्रैन कनारिया और सांता क्रूज डे टेनरिफ में संत पापा मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और प्रवासी स्वागत केंद्र और मदद के लिए फ्रंट लाइन में काम करने वालों से मिलेंगे। संत पापा अपनी यात्रा के दौरान स्पेन में पुरोहितों द्वारा शोषण के शिकार लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया में आई खबरों के बाद वाटिकन प्रेस ऑफिस के टेलीग्राम प्रोफाइल के जरिए वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह मीटिंग स्पेन की कलीसिया ने आयोजित की है, पीड़ितों, उनकी इच्छाओं और उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए मीटिंग के बाद ही यह जानकारी दी जा सकती है। शोषण का मुद्दा स्पेन की कलीसिया के लिए एक दर्दनाक मुद्दा बना हुआ है, जिसने हाल के सालों में रोकथाम और मुआवजे के मकसद से कई कोशिशें की हैं। हाल ही में मार्च में स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, धर्मसंघियों के सम्मेलन और मिनिस्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंसी के बीच इस दर्दनाक सच्चाई को न्याय और सत्य के साथ सुलझाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। संत पापा के दौरे के पहले कई स्थानीय मीडिया ने यह मुद्दा उठाया है और कुछ ने बताया है कि स्पेन के कई पीड़ितों ने संत पापा को चिट्ठियां भेजकर उनसे मिलने का आग्रह किया है। संत पापा लियो 14वें बंद कमरे में उनसे बातचीत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के परमाध्यक्षीय काल में 2008 में अमेरिका, साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दौरे के दौरान पहले से ही देखा जा चुका है। और संत पापा फ्रांसिस के समय चिली, आयरलैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम के दौरे के दौरान भी ऐसी ही सभा हुई थी। कनारी आइलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें शुक्रवार शाम को रोम लौटने के लिए अपने विमान में सवार होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।